समझा रहे हैं, आप समझ रहे हैं। महाराज कहने जो चलेगा सो सुख पावेगा। दसवंध तो अपने लिए बहुत जरूरी है। अब मुसलमानों के 40% कढ़ते हैं, आपां नूं तां हले 100 चों 10 रुपए कढ़न नूं कहा। मुसलमानों में कहते 100 कमाना 40 रुपए कढ़ देख लो, जो 40 कढ़नी है थोड़ी मर्जी, फिर तुसीं कहोगे बड़ा औखा काम है। यह दसवें पातशाह नूं पता सी भी यह दसवां का हिस्सा मसा ही कढ़नगे, इस करके तुसीं दसवंध अपना कढ़ के नाल दी नाल किसी सेवा दे विच ला दिया करो। सतगुरु कहते कोई विघन नहीं पैंदा। आ जपजी साहब का पाठ, नितनेम, मूल मंत्र अभ्यास, जिन्ना जिन्ना कोई दसदे ने उन्ना उन्ना करो करो। पर यह गल है भी महीना च करके तुसीं आखो बनिया तो कुछ नहीं, यह महीने महूने नाल कुछ नहीं बनना। मैं दसा बड़ा समा लगता थोड़ा जिहा, परखां भी पै जांदियां ने, पर एक दिन जदों फिर कृपा हुंदी है ना उत्तों छप्पड़ पाड़दा, फिर इन्ना कोई डिगदा बंदे तो संभालिया नहीं जांदा। महाराज कहिंदे देवन को एक है भगवान, फिर वाहिगुरु दिंदा बड़ा है। पहला जरूर थोड़ा जिहा औखा होना पैंदा, फिर तो कोई अंत ही नहीं रहिंदा है। इस करके महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे ने आओ, जिन्ना नाम जपोगे बह के संगत विच उन्ना ही वड्डा लाहा मिलेगा। वाह।

हर जसरे मन गायल जो संगी है तेरो अवसर बीतो जात है गयो मान लय मेरो संपत रत धन राज सो हद नी लगायो काल फास जब कर करी सब भयो करायो जान बूझ के बावरे काज जगारियो पाप करत सुख ज्यो नहीं ने कर बनवारियो जे बिद गुर उपदेसे आसो सुन रे भाई जे बिद गुर उपदेसे ध्यान दियो जे बिद गुर उपदेसे आसो सुन रे भाई नानक कहत पुकार के नानक कहत पुकार के कहो प्रभ शरण आई कहो प्रभ शरण आई नानक कहत पुकार के नानक कहत पुकार के नानक कहत पुकार के कहो प्रभ शरण आई कहो प्रभ शरण आई वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह करवट क्या परिवार जी का खालसा।

दास सदा कुर्बानी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गज के आखो जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

ऐसे गुरु तो वारे वारे जावा जेड़े मेरे सतगुरु गरीब नवाज पातशाह ने राजयां दी पूजा विच नहीं लाया। आख्या नहीं वह परमेश्वर जी की पूजा करनी है वह राजान राज बोलो राजान राजयां दा भी राजा है किसे राजे की पूजा विच नहीं ला दिता। समय असमय अनुसार राजे जेड़े हुए ने उन्हां दी भी पूजा संसार विच हुंदी आई। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब ने अपने सिख नूं इह बख्शिश कीती कि किसे राजे की पूजा नहीं करनी राजयां दे राजे की पूजा करनी राजान राज गरीब नवाज पातशाह। लोकी दिन चढ़दा है गड़वियां लिख के पानी दियां जग लिख के पानी दियां सूरज नूं मत्था टेकदे ने सूरज की पूजा करदे ने। साहब ने कहा नहीं सूरज की पूजा नहीं करनी जेदी सूरज पूजा करनी है वह पानान पान है वह सूरजां दा भी सूरज है ओदी पूजा विच लगना है। आख्या महाराज लोकी मस्या तो दो तीन दिन बाद पैसे सुटदे ने चंद्रमा की पूजा करदे ने। सतगुरु पातशाह कहण लगे नहीं चंद्रमा दे हाथ वास कुछ नहीं चंद्रमा अपने कोलों रोशनी नहीं दिंदा नमो चंद्र चंद्रे की पूजा करनी। आख्या महाराज देवी देवत्या की पूजा करिए कहण लगे नहीं देवी देवत्या की पूजा नहीं करनी। कहण लगे किनू पूजिए धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहण लगे ओ देवान देव्या देवत्या का भी वह देवता है ओदी पूजा विच मेरे मालक ने इन्हां सारे संसार दीआं पूजां विचों ला के मड़ियां दीआं कबरां तो चुक के बांह फड़

एक मिनट लई शांत चित होके प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। मार्ग कहिंदे ने रस्ते नूं, सारा संसार रस्ते तो भटक गया, भूले सिख भुल गए सिख। यह नहीं कि संसार ते भुलिया सी। अज मैं एक लेख पढ़ रहा सा, 500 साल तो उत्ते समा हो गया है। धन गुरु नानक पातशाह दीन दुनिया के उस दीपक नूं जगत विच जगया, जिदे बारे भाई गुरुदास जी कहिंदे मिट्टी धुंद जग चानण हुआ। मगर जे असीं अज सिखां दे घर विच झाती मारीए ते की भाई गुरुदास जी दे उस दीपक दा चानण साडे घरां विच हो गया। उसे तरह वर्त रखदे आं, उसे तरह श्राध करवाउने आं, उसे तरह पीरां फकीरां दीआं पुछणा पाउंदे आं, उसे तरह पंडतां नूं न्यूयॉर्क फोन करके अपने भविष्य बारे पुछदे आं, उसे तरह इंग्लैंड वाले पीरां नूं पुछदे आं। साडे घरां दे विचों ओह अनेरा अजे दूर नहीं होया जिहड़े अनेरे नूं दूर करन लई दीपक वेख के भाई साहब ने कहा सी सतगुरु।

धन गुरु गोबिंद सिंह साहेब धन गुरु गो धन गुरु गोबिंद सिंह साहेब।

मेरा सच साहेब मेरा नानक बोले बुलाया तेरा धन गुरु ग्रंथ साहिब पिता जी नानक बोले

सचेत हो सतगुरु गुरु नानक पातशाह दी पावन बाणी दे कि जे तेरी गठड़ी दे विच गुण होए जे तेरी गठड़ी दे विच परम पिता परमेश्वर दी बख्शी रहत होई ते परमेश्वर आप तेनु कहूगा आ खालसा मेरो रूप है खालसे मैं हूं करूं आ प्यार नाल आण के दोवे बावा पहाड़ पहाड़ जिडियां भारी भजान के भारी भरोसो वड्डियां बावा वाला बापू आखूगा खालसा मेरो पिंड प्राण खालसा मेरी जान की मगरो ता आखूगा जे तू गुणा दी मालक होएगी ते अवगण वाली नू ते मेरे साहब कहिंदे मेरे कंत न पावे चोलड़ा प्यारे क्यों धन छेजे जाए मेरे साहब कहिंदे ने अवगण यारी कंत न पावे बोलो अवगण यारी सारे बोलो जरा अवगण यारी मन की खोटी खोट कमावे मन की खोटी अवगण यारी उस मालक नू चंगी लगदी नहीं मन दी खोटी खोट कर दिया फिर का सावना जाने मूड़ा अंदरों पिरदा साव उदे सुभा नू इहने जाणिया ही नहीं कि मेरा पति ते उहनां नाल प्यार करदा जिहड़ियां गुणवंती ने जिहड़ियां गुणां दीआं मालक ने ते आपां इस करके गुरमुख प्यारे हो मेरे सतगुरु दे चरणां विच बेनती करनी आ कि आपां नू सतगुरु गरीब नवाज जी कृपा करो निर्गुण यारे गुण नानके निर्गुण यारे गुण नानके हे मेरे सतगुरु गरीब नवाज मैं निर्गुण यार वां मेरी झोली दे विच गुणा दी दाद पा जेड़े गुणा दा जेड़ी रहत जेड़े नाम सिमरन बंदगी जेड़े जीवन दा सदका मेरा ते तेरा विछड़े दा मिलाप हो जाए वोहे

0: आखो सतनाम श्री नाभी चो खिंच के आखो सतनाम
1: श्री वाहिगुरु।
0: कलयुग में एक नाम आधार, बोलो कलयुग में एक, फिर बोलो कलयुग में एक
1: नाम,
0: एक नाम आधार। कलयुग दे विच एक नाम ही आसरा है। धन गुरु अमरदास महाराज दा पावन बचन पिया करो, घट घट कर दे साचा नाम मेरा आधारो, आसरा है मेरा सच्चा नाम, सच्चा नाम मेरा बेस है, सच्चा नाम मेरी टेक है, साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा जिन भुखा, फिर बोलो जिन भुखा, एक बार रोम रोम दे दरवाजे खोल के आखो जिन भुखा, सच्चे नाम दी वडियाई जिन भुखा, सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसिया, जिन इशा सदा कुर्बान कीता गुर विटो, जिस दिया ए

नाम साचा नाम मेरा आधार। सच्चा नाम मेरा आसरा है, सच्चे परमेश्वर का नाम मेरा आसरा है। कलयुग दे विच मेरी इज्जत पत रखण वाला मेरे को इको ही गहना है, इको ही परमेश्वर की टोक है दिती हुई जिहड़ी सतनाम श्री वाहेगुरु। नाम वालियां दे अपने सेवक दे पर्दे ढकदा है, अपने सेवक की लाज पत रखदा है। जिहड़े नाम जपदे ने ना उहनां नूं मेरे साहिब जी कहिंदे ने औखी घड़ी ना देखण दे अपना बिरध संभाले हाथ दे राखे अपने को सास सास प्रत पाले। जेड़े नाम जपदे ने उहनां नूं रोगन ते अर सोगन ते जल जोगन ते बहु पात बचावे उहनां ते शतर अनेक चलावत कहावत उतन एक ना। कितना रखदा जी, कितना बचाउंदा है, राखत है अपनो कर दे कर करमणे हथ उहनां नूं अपना हथ दे के बचा लैंदा। राखत है अपनो कर दे कर पाप समूह न पेटन पावे और की बात कहां कहतो सो पेट ही के पट बीच बचावे। माता के उदर में प्रतपाल करे सो क्यों मनो वसारिये, मनो क्यों वसारिये ए वड दाता जे अगन में आहार पहुंचावे। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह। इतना लिखिया गुरबाणी दे विच के मां दे पेट विच ए पुट्ठा, इतना गुरबाणी विच लिखिया कि जिथे अग्न पखे पड़हारे अग दे लाटां बलदियां सी इहदे चार चफेरे जीव दे उर्द मुख महा गुबारे पुट्ठा मूह थले नूं लत्तां तां नूं ते बड़ा अनेरा सी उथे जिथे मां दे पेट विच अग विच जल रिहा सी विचारा। मगर उथे ए जाप रिहा सी वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह। उथे जदों जपदा सी ना इतना शब्द लिखे एकाग्रता बख्शे आखो सतनाम श्री जिथे अग्न पखे पढ़हारे उर्द मुख महा गुबारे ते ध्यान देना है। उथे लिखिया सास सास संभाले सोई, ए सास सास उस वाहगुरु नूं याद करदा सी। उथे अग दे विच गुरमुख प्यारियो ए 24 घंटे वाहगुरु दी याद विच जुड़िया सी ते उथे फिर अग दे विच उथे खसम छडाए लिया इनू उथे पुठे लड़के नू उथे खसम छडाए लिया। बोलो हां उथे खसम, फिर बोलो उथे खसम। उथे पुठे लड़के नू किन्ने छडाया, खसम दे वाहेगुरु ने। ते जदों इथों छडा के बाहर लै आंदा इतना लिखिया है विचों गर्भे निकल आया। बोलो विचों गज के आख्या करो उस फोटो नू वेख के, उस तस्वीर नू वेख के कि उथों छडा के किसी ने गवाही दे के इहदी जामनी भर के किसी ने उथों छडा के बाहर लिया विचों गर्भे निकल आया। बोलो विचों गर्भे निकल आया। जो बाहर आया खसम वसार दुनी चित लाया, खसम वसार दुनी चित लाया। फिर बोलो खसम वसार दुनी चित लाया। बस विचों बाहर आया ते ओ जिहड़ा छडाउण वाला सी ओ भुल गया, दुनिया चेते आ गई, मम्मी चेते आ गई, चाचा चेते आ गया, नानी चेते आ गई, फुफी चेते आ गई, हुण ए चेते ने। ते माया अमर वरताया, माया दा हुक्म चलन लग पिया। मेरे सतगुरु कहिंदे जैसी अगन उधर मैं तैसी बार,
ਮਾਇਆ ਜਿਤਨਾ ਅਗਨ ਅੱਗ ਦੀ ਅੰਦਰ ਚ ਤਰਲੇ ਪਾਉਂਦਾ ਸਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸੜ ਜੂੰਗਾ ਆ ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਵੀ ਬੰਦਿਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਰਲੇ ਪਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਉਹਨੇ ਛਡਾਇਆ ਵਾ ਨਾ ਤੇ ਇਸ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਹਨੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਏ ਇਹ ਅੱਗ ਵਿਚ ਸੜ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵਿਚੋਂ ਬਚ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਅਰਬਾ ਸੰਖਾ ਨੀਲਾ ਰੂਹਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਮਮਤਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਮੋਹ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਕਾਮ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਸੜ ਗਈਆਂ ਈ ਜੇ ਇਸ ਅੱਗ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਪਿਆ ਕਰ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੁਣ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਿਆ ਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਿਆ ਕਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਾਤ ਗਰਭ ਮੈਂ ਆਪਣ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਤੈ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਪਾਵਕ ਸਾਗਰ ਥਾ ਲਹਿਰ ਮੈਂ ਤਾਰੋ

0: सतगुर पास पूरे सतगुर पास पूरे
1: सतगुर पास सतगुर पास
0: जी पूरे सतगुर पास पूरे सतगुर पास पूरे
1: सतगुर पास पूरे सतगुर पास
0: ओए नमाणी तै पवा नमाणी होके नमाणी आखा अपने आप नू महाराज मैं नमाणिया मेरा कोई मान नहीं साची लेवे बिन ए नमाणिया दे महाराज तेरे चरणा विच टैगी आणके इनू शब्द बख्शे शब्द लाग सवारिया इनू शब्द दे नाल जोड़ दे जिदे नाल एदा जीवन सवर जावे ते बाबा फरीद जी कहिंदे ने मैं ते भुलिया रहा कि जे किते तै पिया नीवा हो गया धरती ते मत्था टेकिया खुदा नू नमस्कार कीती किते मेरी चिट्टी पग ना मैली होए मैं भुलावा पग दा बोलो मैं भुलावा
1: पग दा
0: मैं भुलावा पग दा मत मैली होए बहुतिया नू सानू ए ही रहिंदा जिन्हू किसे नू कह के वेख लो जी जूठे बर्तन साफ करियो कहिंदे जी करन नू जी ते करदा कपड़िया ते छिट्टा पैंदियां एक गुरु दा सिख आनंदपुर साहब एरकां दसंबर दे विच आनंदपुर साहब सतगुरु गरीब नवाज दे चरणा च जाण दा मौका मिलिया धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज की चरण छो प्राप्त की पावन धरनी नू करोड़ करोड़ करोड़ करोड़ करोड़ जन्म करके नमस्कार जिथो सिखी का जीवन आपां नू खालसा ही जीवन मिलिया उथे बाबा लाभ सिंह साहब दे बाबा सेवा सिंह साहब दे लंगर विच एक गुरु का सिख बड़े सुंदर कपड़े पाए ते हर गुरसिख की आण के थाली चुक के ते थालियां चुक के साफ करदा फिरे एक सब्जी का छिट्टा उठिया ते ओदे सुंदर चिट्टे चोले दे उत्ते पै गया आखो सतनाम श्री नहीं गज के आख्या करो वजन बड़ा कीमती आ आपां हौली उदों बोलदे आ जदों गैर हाजिर हुंदे जुड़ के आखो सतनाम श्री सब्जी दा चिट्टा पै गया चिट्टे चोले दे उत्ते ते किसे ने लागों आवाज दित्ती गुरु दे सिखा तेरे चिट्टे चोले ते चिट्टा पै गया दाग कहिंदा सज्जणा ओ जिहड़ा मेरा बापू आ ना वेखण वाला ओनू पता वा कि ए दाग कित्थों लगा ते दूसरे दाग कित्थों लगदे जेड़े दाग ओ इक ओ नेड़े ठेके चो लगदे दाग दोष मुंह चलिया लाए पढ़दे हो ना दाग दोष मुंह चलिया जेड़े दोषां दे दाग लगदे ने मेरे गुरु नू ओदा भी पता है ते मेरे गुरु नू इस दाग दा भी पता वा कि ए जे सोड़े झाड़दे आ जूठे बर्तन साफ करदे आ शरीर दे उत्ते पिया वा ए जेड़े दाग लगे ने ए जेड़े छिट्टे पए ने इन्हां छिट्टियां वालियां नू ते मेरा कलगीधर पातशाह गलना लाउंदा गलना ते बाबा फरीद कहिंदा जदों मैं कदी नीवा होण दा जतन कीता ते मैनू ए भुलेखा रहा कि किते मेरी पग ना मैली हो जाए मगर मेरी पागल रूह ए नहीं सी जानदी हां जी
1: गहला रूह न जानई सिर भी मिट्टी खाए
0: बाबा फरीद जी कहिंदे मेरी रूह गहली मेरी कमली रूह ए नहीं सी जानदी कि तू ते किना किते पग नू मिट्टी ना लग जाए ए ते सिर भी एक दिन जेड़ी सिर दे उते तू ए सुंदर पग बधी है ए सिर भी एक दिन मिट्टी ने खा जाणा मिट्टी ने कबर दे विच दग देना है जै सिर रच रच बांधत पाग सो सिर चुंच सवारे काग कहत कबीर सुनो मन मेरे यही हवाल होएंगे तेरे ए सिर दा मान ए पग दा मान करदा है ओ भोलिया ए शरीर भी एक दिन मिट्टी ने खा जाना है ए शरीर भी जां ते लकड़ियां ते सड़के सवाह हो जाना है ते जां कबर दियां विच कितड़े

0: आस इट सराणा पोहे सवण कीड़ा लड़ियो बोल सोली कीड़ा लड़ियो। एक दिन ओ जिदन आना है जिदन कबर पुटी जानी है कबर दे विच तेनू लटा देना है उस कबर दे थले सराणा नहीं होना तेरे थले ते तेरे सिर दे थले इट रख देनी इट सराणा पोहे सवण ना कोई थले तलाई विछाउणी तेनू मिट्टी उत्ते ही सवाउणा है मिट्टी नू मिट्टी उत्ते ही पा देना है इट सराणा पोहे सवण सजना कीड़ा लड़ियो मास फिर केतड़िया जुग वापरे इकत पया पास किन्ने जुग बीत जाने ने तू मिट्टी विच मिट्टी हो जाना है इस मिट्टी तो ना डर ए ना सोच के जो मैं जोड़े झाड़ूंगा मेरी पग नू लग जाणगे सजना ए जोड़िया दी धूड़ी जड़ी है ना गुरु रामदास महाराज कहिंदे गुरसिखा की हर धूड़ दे बोलो गुरसिखा की फिर बोलो गुरसिखा की हर हम पापी भी गत पाए एक था ते होना जितने तीर्थ देवी थापे गंगा जमुना कदार जिन्ने त्रिवेणी जिन्ने तीर्थ देवियां देवतियां दे ने सब लोचे धूर साधु की ताई किते मेरे गुरु अर्जुन देव महाराज पातशाह कहिंदे चरण साध के तोए तोए पियो बोलो जी चरण साध के अर्प साध को अपना जियो साध की धूड़ करो इशनान साध ऊपर जाइए कुर्बान मेरे साहब जी कहिंदे ने चरण धूड़ी हो जा माग मजन संग साधुआ धूड़ी कर हर का नाम ते आए सुन सबना नू कर धूड़ी हो जा सा संगत गुरसिखा दे चरणा दी धूड़ हो जा किते गुरु अर्जुन देव महाराज पातशाह कहिंदे जा को हर रंग लागो इस युग में सो कईयत है सूरा आत्म जिने सगल वस ताके जाका सतगुर पूरा ठाकुर गाइए आत्म रंग सरणी पावन नाम ते आवन सहज समावन संग अगे सुनियो जन के चरण वसे मेरे हीरे संग पनीता देही जन की तूर देओ कृपा निध आप बोलो जन की
1: तूर देओ कृपा निध
0: सारे बोलो जन की
1: तूर देओ कृपा निध
0: जेड़े तेरे सेवक ने उन्हां दी जन

0: सच जुड़ के आखो आदि सच
1: जुगाद सच
0: है भी सच नानक होसी भी सच अगम अगोचर सच साहेब मेरा सच साहेब मेरा सच साहेब मेरा नानक बोले।

सबना का खसम है। ए सच सबना का खसम है, जिस बख्शे सो जन पावे, जिस बख्शे सो जन पावे। कहे नानक सच सोहेला सच्चे घर गावे, कहे नानक सच सोहेला सच्चे घर गावे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरमुख प्यारे गज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यार विच आण के, गुरु सत्कार विच आण के, आप जी सर्वत माई भाई तनता दे जोग राजान राज पानान पान देवान देव महान सतगुरु के जाहर जहूर हैं, के हाजर हजूर हैं, हमेशल सलाम हैं, समस्तल कलाम है। समस्तल कलाम सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पातशाह जिन दुनिया के मालिक पातशाह जी चरण शरण विच आण के आप जी ने बड़े प्यार ते अदब सत्कार दे नाल जिथे गरीब नवाज पातशाह की बाणी सरवण की, नितनेम साहब सरवण किया, उथे कीर्तन विच आप जी सरवण कर रहे। सो भाई रे राम कहो चित लाए, बोलो भाई रे मन नू मुखातब करके भाई रे राम कहो चित लाए। हर जस वखर लै चलो शौ देखे पति आए, हरी दे जस दा सौदा करके जाओ भाई, परमेश्वर खुश होके आप जी नू गल नाल लावे। शौ देखे पति आए, सतगुरु गरीब नवाज आप जी नू गल नाल लावे। मेरे सतगुरु जी अगे जाके जड़ी जोदड़ी कर रहे ने, आओ सारे पढ़िए वणज।

0: सारे आखो सारे ही
1: तेरी परिया गोविंद मिलन की एह तेरी परिया।
0: ते हुण आपां व्यापार करन आया, एक बचन गुरबाणी दे विच मेरे साहब ने बहुत कीमती, वैसे ते एक एक बचन कीमती, गुरबाणी सारी हीरिया मोतिया जवाहरां नाल मड़ी, गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ। एक शब्द बड़ा प्यारा मेरे साहब जी ने प्यारा वचन किया है, कहिंदे तां व्यापारी जानिए, बोलो तां व्यापारी, व्यापारी शब्द बड़ा पछाणिया तुहाडा, तां तुसी व्यापार करन ते सारे ही आए हो, हर बंदा घरों व्यापार करन जांदा है, मगर जेड़ा घाटा खा के चल जाए ना मेरे मित्रो गुरसिखो भाईओ, ते उन्हूं लोकी कहिंदे नहीं इनू व्यापार करना आया ही नहीं, जेड़ा घाटा खा के चल। तां वा गुरमुख प्यारियो के कुछ तां व्यापारी जानिए लाह लै जाओ, लाह व्यापारी ते तां ही किसे कहना लै भी इहदे प्यो ने 10 रुपया दी रास पा के दित्ती सी, इह 10 दे नाल 100 कमा के लाया, बड़ा वड्डा व्यापारी है, मगर आपां नूं ते गुरमुखो मूल दित्ता परमेश्वर ने सुवास, आखिया एक एक सुवास दे नाल परमेश्वर दी बंदगी करके लाह खट के आई, मगर इथों कोई गुरमुख रूहां ते लाह खट के चले गईयां, मगर मेरे वर्गे मनमुख प्यारे जेड़े मनमुख दियां गल्लां मन दियां गल्लां सुनदे रहे, मन पिछे लगे रहे, गुरु दी गल ना सुनी, ए ना सुनिया पीओ पौल खंडे धार होए जन्म सोयला, ते मन दियां गल्लां सुनिया के शराब पीला, जेड़े मन दियां गल्लां सुनदे रहे। मेरे साहब कहिंदे चले मूल गवाए मनमुख चले।

गुरमुख लाह ले गए, गुरमुख लाह ले गए, गुरमुख चले मूल गवाए मनमुख चले।

0: गुरु आखो जी सतनाम श्री भाई रे राम कहो भाई रे राम कहो बोलो भाई रे
1: राम कहो
0: चित लाए हर जस वखर ले चलो इथो जान लगे पंडा बन के जाओ इथो जाके लाद खेप संतें संग चाल जिस वखर को लैण तू आया राम नाम संतन घर पाया तज मान लिहो मन मोल राम नाम हिरदे में लाद खेप गड्डे लद के जदों सरकारे दरबारे जावे तू निरंकार दे दरबार विच उथों तक तेरे गड्डे खलोते होण ते पुछण भाई कौन आया है ते आखणे पजनीक सिंह आया है ए जरनैल सिंह आया है ए रजिंदर सिंह आया है ए गुरु का प्यारा आया है की करके जी ए गड्डियां दे विच की भरिया है ते किते ऐसा ना होवे फोल फोल के वेखिए ते विचों चुगलियां निकलण विचों निंदिया गड्डे ते दोवां दे लदे जाणे ने चंगियाईयां बुरियाईयां बोलो चंगियाईयां फिर एक बार आखो कादे गड्डे लदे जाने चंगियाईयां बुरियाईयां वाचे धर्म हजूर उस धर्म की हजूरी विच जाके धर्मराज के हजूर विच दो ही चीजा ते परखियां जानियां बंदिया तेरिया चंगे ते मंदे कर्म ते वेख कोई एहो जिहा कर्म कर तेरी एक एक पंड दे विचों निकले सतनाम श्री वाहिगुरु तेरी एक एक कहो नानक समझ रे आने आज काल खुले तेरी गांठुली बोलो आज काल खुले तेरी आ बचन जरा चंगी तरह बोलो कि अज जा कल उथे जाके तेरी गठली खुलनी गांठुली गांठुली मैंने गठ इथो जज हुंदा बाणी विच मेरे साहब कहिंदे ने कि गठा मार रहा बंदा हर रोज इहदियां गठा बन रही ने ते कहिंदे कहो नानक समझ रे आने बोलो कहो नानक समझ रे हे मेरे आने मना हे आने जीव ए गल समझ ला के आज काल खुले तेरी गांठुली बोलो आज काल खुले तेरी उथे निरंकार दे दरबार च तेरी गठ खुलनी है चेता कर उस गठ दे विचो की निकलूगा किते चुगलियां ना निकलन किते निंदिया ना निकले किते शराब दियां बोतलां ना निकलन किते मास ना निकले किते कुकर्म ना निकलन जेड़ी जेड़ी तेरी गंढ परमेश्वर खोले ओदे विचो निकले सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु
1: सतनाम वाहेगुरु
0: भैणो गज के
1: सतनाम वाहेगुरु
0: मेरियां धीआं गज के जरा बोलो।

गुण बहुते मैं एक ना जानया मैं मूरख किश दीजै प्रणवत नानक सुन मेरे साहिबा डुबदा पत्थर लीजै।

वाह वाह वाह वाह वाह, अच्छा ऐनी प्यास लग गई हो, ऐनी अंदर तड़प पैदा हुई हो, ऐनी वो तो बिना उदास हो गई है, सिर देन नु तैयार है। आंधी हां सजना नैन हमारे प्रिया रंग रंगारे, मेरिया अखां उहदे रंग विच रतियां गईयां ने, 24 घंटे होर किसे नु नहीं देखदियां, ए 24 घंटे गाउंदियां ने, एक भोरी दर्शन दी जय, एक भोरी दर्शन दी जय, एक भोरी पावां तरला तुसीं वी, एक भोरी दर्शन दी जय, एक

करो कृपा। विण सेर सेव करी जय, विण सेर सेव करी जय, विण सेर ये पक्के गुरु दिया प्रेमणा ने, जिन्हां नूं पूरे गुरु की चेता लगी आ, जिन्हां नूं पूरा गुरु मिलन दा चा मन विच पैदा होया, वो सौदा कर दिया ने, कहिंदियां सिर दवांगियां, सिर सिर दा मूड़ा बना के तेनू उत्ते पावांगियां, एक बार मैनू प्यारे दा राह दस। अज कच्चे गुरु कच्चे कहण वाले, मैं अजूटा सैटी जिथे गया सां, गुरमुख प्यारे भी गए सी, भाई तारा सिंह हुणी उथे प्यारे, एक सज्जन मिलिया मैनू, एक बार आखो सतनाम श्री वाहिगुरु, प्यास की गल आ के प्यास भी लगे ते पूरे गुरु दे दर्शना दी लगे, पूरे गुरु दे दी किना दी, हां फिर एक बार आखो का दी जी, अधूरे बड़े ने 99, अज अधूरे ने इस दुनिया ते, ऐस वेले 99 गुरु अधूरे ने, 99 इको ही पूरा है, बाणी गुरु, एदे तो बिना कोई धरती ते गुरु नहीं। उथे कमाल दी गल सुनाई, सहते मोना सी, ओ कहिंदा जी कथा सुनदा वा, आनंद आया जीवन विच, मैं तुहानू घुम्मण खाणना किसे दिन, यूटा साल्ट लेक दे लागे लागे बड़े सुंदर पहाड़ ने, बर्फ पैंदी, मैनू कहिंदा मैं तुहानू घुमा के लिया, घुमाण लै गया, ध्यान दिओ एकाग्रता बख्शो, मैं कोई रोचक गल बना के आप जी का ध्यान नहीं उहदे विचों कुछ लैणा चाहुंना, पहाड़ी दे उत्ते लै गया जाके, कहण लगा कि कुछ दिनां तों जदों दा कथा सुन लिया, मेरा मन करदा है कि मैं अमृत छक लां। आप जी नूं खुशी दी गल दसां, 27 तरीक नूं उत्थे अमृत दा बाटा तैयार करना है, सारा शहर ही अमृत छकण लई तैयार हो गया, जिन्नियां 60 फैमिलियां रहिंदियां ने जूटा सिटी दे विच, 60 दियां 60 फैमिलियां ही अमृत छकण लई तैयार, सारियां ने नाल खाता, ऐसी गुरु की कृपा होगी। इनू जो दास ने बेनती की कि थसरना, जे तेन गुरु के बचन प्यारे लगे ने ते फिर तू अमृत छकन लई तैयार हो जा, कहिंदा मैं नाम लिया है, ध्यान दियो मैं नाम लिया है, मैं नाम कित्थों लै लिया, पंजां तो बिना ते नाम कोई दे नहीं सकदा, बोलो आखो सतनाम श्री, क्योंकि एक बाणी दे विच बचन लिखा सतगुर दाता हर नाम का, सतगुर दाता, फिर बोलो सतगुर दाता, गज के एक बार आखो नाम कौन दे सकदा, सतगुर दाता अमृत दा बाटा भी जे कोई कल्ला बंदा बना के दे दे ते लै लोगे, पांच सिंह अमृत जो देवे ताको सिर धर शक पुन लेवे, कल्ला बंदा ते रहत भी दृढ़ करावे ते नहीं लैनी, पुन मिल पंचों रहत जो भाखे ताको दृढ़ कर मन में रखे, जेड़े पंजां दा फैसला है। ते कहन लगा जी मैं नाम लिया है, मैं कित्थों लै लिया नाम, राधा स्वामियां तो, कहिंदा नहीं, मैं निरंकारियां कोलों, कहिंदा नहीं साडे दुश्मन थोड़े नहीं होण, आप जी नूं तां बेनतियां करदा सचेत होण दी जरूरत, दुश्मन थोड़े नहीं, आख्या फिर कित्थों लिया, सच्चे सौदे वालियां दा लै लिया ई, नूर महल वालियां दा कोई शब्द शुद्ध चानना वेख लिया, कहिंदा ना इन्हां दा नहीं लिया, मैं क्या फिर तू कित्थों लै लिया है, एक बड़ी सत्कारयोग संस्था दा नां लैके कहिंदा जी पुच्चो दी मंडी वालियां कोलों नाम लिया है, पुच्चो मंडी बाबा हरनाम सिंह साहब बड़े जीवन वाले हुए ने, बड़ी करनी वाले, बड़ा सिमरन व्यासी रूह हुई, रब दे चरणां नाल लपटी हुई रूह रही, मैं कहा पुच्चो मंडी वालियां दा नाम ते मैं सत्कार नाल सुनिया, देखिया तो नहीं कदी, वह नाम देंदे ने, कहिंदे जी उन्हां दी एक शाखा है मलूका पिंड बठिंडे जिले च, मैं कहा जी उत्थे की है, कहिंदा आओ मैं तुहानू घर जाके विखाउणा, ध्यान देना आखो सतनाम श्री, जितना दा भाई जरनैल सिंह साहब दा शरीर है ना, इतना दी पग, इतना दा कमीज पजामा, करण वरड़ी दाढ़ी, उस बाबे दी नाम उहदा बलविंदर सिंह, कहिंदा मैनू उहने नाम दिता है, मैं कहा की नाम दिता है दस देंगा, कहिंदा दसदा तां नहीं, उह कहिंदे ने दसना नहीं नाम किसे नूं, मगर तुहाडे नाल वी प्रेम पै गया, मैं दस दूं उहने नाम की दिता, ध्यान दिओ, मैं कहा की नाम दिता है, तुसीं हैरान हो जाओगे, इन्हां कालियां भेडां नूं कित्थों फड़ोगे हुण, इन्हां नूं कित्थों फड़ोगे, राधा स्वामी का पता लग गया कि साडे दुश्मन ने सानू तोड़ दे, निरंकारियां का तो पता लग गया, आ जिहड़ियां सिक्खी पेसे च कालियां भेडां इन्हां नूं की करोगे, आखण लगे जी उहने नाम दिता, मैं की नाम दिता है, कहिंदा एक ओंकार सुनियो, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सह भंग गुर प्रसाद ओम, इना लिख के ना एक ओंकार सतनाम ते नाल जोड़ता ओम, फिर अगे सुनो, बह जा पुत बह जा, इना दे के
ਨਾਲ ਓਮ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਜੁਨੀਸਾ ਭੰਗ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਓਮ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਬਿੰਦੇ ਮੁਕੰਦੇ ਉਦਾਰੇ ਅਪਾਰੇ ਹਰੀਅੰ ਕਰਿਅੰ ਸ਼ੇਵਾਏ। ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਿਰਦੇ ਚ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਚੋਰ ਵਾਰਤੇ ਨੇ ਸਮੇਂ ਨੇ। ਹੈ ਭੁੱਚੋ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੁੱਚੋ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜਣਾ ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ ਤੁਰੇ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਵਾ ਜਿੰਨੇ ਡੇਰੇ ਬਣੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਲੈ ਲਓ, ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਬੈਰੀਅਰ ਲਾਏ ਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਆਨੰਦਪੁਰ ਨਾ ਚੱਲ ਜੇ। ਇਹਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜ ਕੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਲਾਤਾ ਓਮ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ ਕੇ, ਗੋਬਿੰਦੇ ਮੁਕੰਦੇ ਉਦਾਰੀਏ ਅਪਾਰੇ ਹਰੀਆਂ ਕਰਿਅੰਗ, ਤੇ ਨਾਲ ਲਾਤਾ ਸ਼ਿਵਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਫੜੂ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਮਿਲਾ ਦੇਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਨਾਮ। ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਸਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੇ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ, ਬਿਲਪ ਕਰੇ ਚਾਹ ਤਰੱਕੀ ਨਿਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਰਸਤਾ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਫੜਨਾ ਪੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪਿਓ ਪੋਲ ਖੰਡੇ ਤਾਰ ਪਿਓ ਪੋ

जन्म सोहेला हो जन्म सोहेला हो ते फिर घर खड़िया उन्हें मेनू वखाया अजीबो करीब मंजा रखिया है मंजे दे उत्ते बलविंदर सिंह दी फोटो लाई फोटो दे कोल चौर रखिया है मैं क्या वो कदी आया है कहिंदा आया मेरे घर मैं क्या ओदे सामने ओदी फोटो दे चौर करदा सा कहिंदा जी ओदी सामने ओदी फोटो दे चौर करदा सा आखिर मन विच की छुपिया इन्हां लोकां दे शर्म भी नहीं आउंदी लज्जा भी नहीं आउंदी एक बंदा होके मेरी फोटो दे उत्ते कोई चौर करे चलो मगरों कोई अज्ञानी करे चवर तखत मालक ते धरती ते इको या गुरु ग्रंथ साहब महाराज पातशाह जे ते चौर हो सकदा है होर किसे ते चौर नहीं हो सकदा 1978 दे विच जिहड़ा 13 सिखा गुरमुख प्यारिया ने शहीदी पाई सी इसे करके पाई सी कि निरंकारी बाबा अपने सिर ते चौर करवाउंदा सी कहिंदे असीं नहीं वेखणा चौर हो सकदा है ते केवल गुरु ग्रंथ साहब दे उत्ते हो सकदा है ते गुरमुख प्यारे इहदी फोटो दे उत्ते उहने चौर रखे ते चौर करदा है ते मालक दे गुटके उहने मंजी दे थले रखे जांदियां दास ने पहलो मारी फोटो भवां के उहदी चुक के ते फोटो सुट के मैं कहा सजना इस मंजे दे उत्ते ए चादर जिहड़ी नापाक होई है दी फोटो दे नाल इहनू चुक इत्थे पवित्र चादर विछा जे गुरु दा अमृत लैणा ही ते इस मंजे दे उत्ते हुण पोथियां रख जिथे अगे फोटो सी पोथी परमेश्वर का थान ओनू थां दे जिहड़ी पोथी परमेश्वर जोगी इस करके गुरमुख प्यारे बचना है ते अंदरों अपने उस मालक लई कहना है एक छिन

हे साहब जी ए जड़ी रोज अरदास हुंदी आखो सतनाम श्री हे साहब जड़ी रोज अरदास हुंदी आ खालसे दी भावे अकाल तख्त ते अरदास होवे भावे हजूर साहब अरदास होवे भावे तख्त श्री पटना साहब अरदास होवे भावे केसगढ़ साहब अरदास होवे दुनिया दे हर कोने दे गुरुद्वारे विच हे मेरे सतगुरु सुख मंगी जांदी आ खालसे दी जहां जहां खालसा जी तहां तहां रशिया रियायत रोज अरदास कीती जांदी आ ते मेरे सतगुरु जिन्हां दी रोज अरदास हुंदी आ उन्हां दी कलास दे विच मैनू भी रला ला मैनू भी खालसा बना ला अरदास करो मेरिया भैणा बच्चिया वीर गुरसिख फिर एक एक दा नाम दस के अरदास ना करौनी पवे रोज सुते सिद्ध पटीशन हो जाए रोज सुते सिद्ध अरदास गुरु दे घर विच रोज एप्लीकेशन तुहाडी लगे जे तुसी खालसे बन जो ते इस करके परसों ए भागां वाला दिन आउणा है कोई मेरी भैण कोई बच्चा मन दे प्रभाव थले आण के गुरु दा पल्ला ना छड्ड दिओ दो तरह दा जीवन हुंदा है गुरु मर्जी ते मन मर्जी गुरु मर्जी ते मन मर्जी ए मन मर्जी होगी जिहड़ा आखोगे अजे साल खलोना है ए गुरु मर्जी होगी कि जिहड़ा कहिंदा हर जपदिआं ढिल ना कीजी मेरी जिंदड़ीए मत जापे साह आवे कहिंदा आवे राम ए गुरु दी मर्जी होगी कि मेरे गुरु दा उपदेश होगा पियो।

ससे जुड़ के जुड़ के। साहब गुरु नानक पातशाह कहणगे सौदा कर लिया परमेश्वर दे नाल, उस वाहिगुरु परमेश्वर नूं अपना मन वेच दिता है ते आख्या जी दिता है ते कुछ लईदा भी आ, कोई चीज दईए ते उहदे बराबर लईदी। मेरे साहब गुरु नानक पातशाह कहिंदे हां सिद्धो मैं लिया है। कहिंदे की लिया है? कहिंदे मन दिता वा ते खिमा लै ली, खिमा निम्रता लै ली उहदे कोलों, नीवा पन लै लिया उहदे कोलों, निम्रता लै ली, झोलियां भर लिया मन दे के। अज जदों मैं कई बार पढ़दे आ ना, तुसीं भी पढ़दे ते मैं भी पढ़दा सिखां दा रोज पढ़दे हो, मन नीवा ते मत उच्ची। इतना हो गया जी, उल्टी गल चल गई, हुण मन हुण उच्चा हो गया ते मत इतना नहीं लगदा। ध्यान दिओ अपने अंदर, झाती मार के वेखो, मन करके ते असीं कोठे ते चढ़े आ, मन करके ते साडे वर्गा है ही कोई नहीं। मन दे विच ते जिन्नू भी वेखदे कहिंदे ओ छड्ड इहदे वर्गा, मैं इहदे नाल चंगा। मन दे विच, मन करके आपां रोज कहिंदे अरदास विच कि हे सतगुरु सिखां दा मन नीवां ते मत उच्ची होवे। मगर कितना दी इह गल हो गई साडे नाल वापर गई, असी मन करके हंकारी बन गए, मत करके नीवे हो गए, मत इन्नी नीवी हो गई आ भरा नूं भरा वेख के राजी नहीं। सिख सिख दा की आ, बोलो जी की आ? जे गुरु गोबिंद सिंह साडा प्यो आ ते सिख दा सिख की लगदा है? इहदे नालों दूसरे भरा ते कदी धोखा दे देणगे? दूसरे भरा नूं ते असी मन्निया है ना कि यह मेरा भरा है, मन करके मन्निया ना। यह ते गुरु ने मोहर कला के दिता कि एक पिता ते तू मेरा गुर हाई, एक प्यो दी औलाद आ, जिन्हें जिन्हें वाटे चो अमृत पीता वा। कमाल दी गल आ, उहदे प्यो दा नाम गुरु गोबिंद सिंह आ, माता साहिब कौर आ, उसे प्यो दा पुत, उसे मां दा पुत, एक दूसरे दा वैरी बने। कदी रहत मर्यादा पढ़ के वेखो, आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। मैं बाहर ना चले जावा, सारे मात्र आप जी नूं कहूंगा, जो सिख सिख दी चुगली करे, बोलो जो सिख सिख दी सो तनखाइया, सो तनखाइया दा मतलब हुंदा है सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब दी हजूरी च जिस तरह गुरमुख प्यारे चौर कर रहे ने, तनखाइया नूं कोई हक नहीं गुरु दी हजूरी च चौर करे। ध्यान दिओ, जिहड़ा सिख सिख दी चुगली करे, जिहड़ा सिख सिख दी चुगली करके काज विगाड़े, उह कड़ा प्रसाद नहीं विगा सकदा, प्रचार सकदा, उह तनखाई है। जिहड़ा सिख सिख दे दाड़े विच हथ पावे सो तनखाई है, जिहड़ा सिख सिख दा मूंह खड़ावे सो तनखाई है। मगर आपां अपने शीशे विच किते झात के वेखीए, फिर असीं सारे ही तनखाई है। इतना लगदा वा हे मेरे सतगुरु, कदी कहना पऊगा हथ जुड़ के, हम बारक मुगद आण, हम बारक मुगद।

एक बार भैनों बचियो तुसी भी पढ़ो, जदों कदे परवटे कटाउण कोई लगे, जदों कदे कोई कर्म कर लगे बची बच्चा, उदों सानू पता लग जाए अंतर जामी जान मेरा प्रभ

मूरख मुगदा जन्म भया, परणवत नानक तिन की शरणा, जिन तो नाहीं विसरिया। परणवत नानक तिन की शरणा, जिन तो नाहीं विसरिया। परम सम्मान योग चवर शतर तख दे मालक, जुगह जुग अटल साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाए मान खोए बैठे गुरु सवारे सत संगी जनों, संध्या वेले दे दीवान दी आप जी ने हाजरी भरी है। अमृत बचना दा कीर्तन सतगुरु जी दे बख्शे हुए नित नेम सोदर रह राज साहिब जी दा जाप आप जी ने सरवण कीता। आओ मेरे साहिब सतगुरु गुरु कलगीधर सच्चे पातशाह जी महाराज, जिन्हां ने वैसाखी दे पुरब ते अमृत दी दात दे के और आप अमृत पान कर गुर चेले दी उस रीत नूं दृढ़ कराया। आओ आपां अज उसे विषय दे उते आरंभता करनी है। सब तो पहला अज दे इस पावन पवित्र जो अमृत बचन आपां विचारने ने, विचार दा विशा आपां केवल सतगुरु के अमृत छकना, केवल ता केवल एक बाजमुखी रस्म नहीं। अमृत दा संबंध केवल ता केवल एक आपां सोचिए भी शायद कोई फिरका प्रस्ती जा वखरेवे दी गल, बिल्कुल नहीं। असल विच अमृत सानू आत्मक जीवन प्रदान करन दे लई, सतगुरु दे चरणा विच जुड़न दे लई दातार दी रहमत है। आओ सतगुरु जी दे अमृत बचना नू हजूर दी कृपा नाल आपां ने विचारना है। आप समूह माई भाई कृपालता करो, मनोबिरतियां नू एकागर करो। साहिब धन गुरु ग्रंथ साहिब जी आप कृपा करन सानू कहण वालियां नू और सुनन वालियां नू अंदर दा टिका बख्श के विचार कहण सुन दी दात बख्श देन। करो कृपालता गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अमृत बचना दे अनुसार जिस भी जीव नूं इह मनुखी जामा प्राप्त होया है ते उस मनुख दी जिंदगी दा एक लक्ष्य मालक ने मिट दिता है कि जिवें समुंदर दे विचों भाप बन के पानी उड़दा है, परत के ओही पानी पहाड़ दे शिखर ते जा के वरसदा है ते छोटियां छोटियां बूंदां दे रूप विच एक ओ प्रवाह बन के किसे दायरे विच चल के दरिया दा रूप धारण करके जिस समुंदर तो विछड़िया है, परत के उसे पानी दी बूंद अपने शौ सागर दे विच लीन हो जांदी है।
ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਾਣੀ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਉੱਡਿਆ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਰਫ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਬਣ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਪਰਤ ਕੇ ਸ਼ੌ ਸਾਗਰ ਦੀ ਖਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਕੇ ਸਾਗਰ ਤੱਕ ਲੈ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਵਾ ਚੱਲੇ, ਹਨੇਰੀ ਚੱਲੇ, ਮਿੱਟੀ ਜਾਂ ਗਰਦ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਡ ਕੇ ਅਸਮਾਨ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਦਿਨ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਣ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੀ ਖਿੱਚ ਪਰਤ ਕੇ ਉਹ ਰੇਤ ਦੇ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਜ਼ਰੇ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਿਰੰਕਾਲ ਇਹ ਬੇ ਸੰਜਰੀਆ ਜੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਾਮਾ